0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू, देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन पुंगचम तीखो, हमारी वेबसाइट है हम वतन पुंगचम तीखो।
3: वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का आंचल छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुख की खातिर हम जुग जुग से सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुख के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी राहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुख कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुख कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को ना बेचा जाएगा, चाहत को ना कुचला जाएगा, गैरत को ना बेचा जाएगा, निकाले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुख कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सोली ना दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 316। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बदलती हुई सूरत हाल। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च जो है वो अपने हतमी नताइज की तरफ जा रहा है या उस तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसने अपनी ही मुंतखब हुकूमत के खिलाफ अब बगावत का अलम जो है वो बुलंद कर दिया है। मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो सामने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को रख रहे हैं, जो उन्होंने वहां पर एक स्टूज किस्म का आईजी लगाया हुआ है उससे वो तमाम काम करवा रहे हैं। और वो जो बातें हमने आपके सामने कही थी, जो कुछ लोगों को नापसंद भी आई क्योंकि कई दफा हमारे और आपके या कुछ और दोस्तों के चीजों को देखने में फर्क होता है, जहां से हम देख रहे होते हैं और जहां से आप, हम भी गलत हो सकते हैं, इसी तरह आप भी गलत हो सकते हैं। बहरहाल पहले खबर ये रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क्या किया है, फिर इमरजेंसी कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में लग जानी है, और कुछ कहते हैं कि चंद जिलों में, कुछ कहते हैं कि पूरे सूबे के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या सुहेल अफरीदी को तब्दील किया जा रहा है? क्या उनकी जगह पर शफी जान, मीना खान अफरीदी या कोई और चीफ मिनिस्टर आ रहा है? इन सब सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वेस्ट ने एक डिफरेंट कलर की चाय बना के पेश की है, एक डिफरेंट कलर की धुन बनाई है उन्होंने इंडिया के लिए। इंडिया में जो मुजाहरीन को डिटेन किया गया, गलत किया गया, लेकिन किसी के सर में गोली नहीं मारी गई, किसी को लाठी नहीं मारी गई, और उनके जो मेन लीडर्स थे उनको भी शाम को ही रिलीज कर दिया सवाए 3-4 के। उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस ने फौरी एक्शन लिया है और उनसे कहा है कि तमाम डिटेनीज जो है उन्हें छोड़ें, जमहूरियत की प्रोटेक्शन करें। पूरी दुनिया का मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है, लेकिन इमरान खान के जो फॉलोअर्स या पाकिस्तानी हैं वो सरों में गोलियां खाने के बावजूद इस तरह का प्यार, इस तरह का एहतराम या इस तरह की केयर या इस तरह का एहसास जो है वो ना यूएन से हासिल कर सके, ना ही वेस्टर्न वर्ल्ड से हासिल कर सके। इस मामले को भी देखेंगे। पहले जरा आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज और मुजाहरों से निपटने के लिए जिलाई पुलिस अफसरान को हदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि एंटी रॉइट स्क्वाड जो है उसको, स्पेशल स्क्वाड जो है उसको इस्तेमाल करें, सादा लिबास एहलकार तैनात करें, थानों, सरकारी अमलाक, पेट्रोल पंप्स और बैंकों की सिक्योरिटी बढ़ा दें। उसके साथ वो कहते हैं कि अगर इज्तमात पहले बातचीत करें, अगर मसला हल नहीं होता तो फिर हवाई फायरिंग और रबर की जो गोलियां हैं वो भी इस्तेमाल करें, मुजाहरीन की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, निगरानी करें, जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबता बेहतर करें। और ये तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने जिलई जो पुलिस अफसरान है उन्हें कहा है कि तुन के रख दें, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही अपना आईजी जो है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का वो ये अहकाम दे रहा है कि मुजाहरीन को डंडा फेरें, रबर की गोलियां भी मारे मारने की जरूरत है और तुन के रख दें जहां रखने की जरूरत है। ये रिटन अहकाम जो है राइटिंग में तहरीरी तौर पर ये तमाम पुलिस अफसरान को पहुंचा दिए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट पर। मतलब कि आईजी जो हैं वो बेलगाम हुए खड़े हैं अपने ही सूबे की जो हुकूमत है उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं किस्म का। आपको पता है कि अभी तक 8 मेंबर सूबाई असम्बली और 3 मेंबर कौमी असम्बली जो हैं, 11 लोग जो हैं और उसके अलावा वर्कर्स तो बेतहाशा हैं, लेकिन 11 मेंबरान असम्बली जो हैं वो इसी सूबे में अगवा हो चुके हैं और आईजी ने उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये कहना गलत होगा, आईजी ने बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी के लिए किया है, क्योंकि अब खबर ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी ने पुलिस को ये अहकाम दिए हैं कि जितने भी एमपीएज या मिनिस्टर्स के पास पुलिस की सिक्योरिटी है, तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को ये अहकाम दिए हैं कि इनकी सिक्योरिटी छोड़ के वापस पुलिस लाइंस में रिपोर्ट करें। मतलब कि तमाम मिनिस्टर्स और जिनके पास भी सिक्योरिटी मौजूद थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में सवाए गालिबन चीफ मिनिस्टर के, तमाम की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और उनको बेयारो मददगार छोड़ के पुलिस जो है वो वापस पुलिस लाइंस चली गई है। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, ये जहां पर 2/3 मेजोरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर ये हो रहा है। जनरल्स पश्तूनों के साथ वही खेल खेल रहे हैं जो इन्होंने बंगालियों के साथ खेला था। इनको ये समझ नहीं है कि जब सियासी जो लोगों के एहसासात होते हैं, मुहरकात होते हैं, या सियासी तौर पर आप किसी को डिप्राइव करते हैं, اس کے ساتھ ساتھ جب لسانی معاملہ اس کے ساتھ ملتا ہے, قومیت ملتی ہے, تو ایسے ہی سمجھیے کہ پیٹرول اور آگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بنگال کے ساتھ بھی یہی ہوا. اگر بنگال میں بھی ایک آدھ صوبہ پنجاب یا سندھ یا کوئی اور قومیں ادھر بھی رہ رہی ہوتی تو شاید آپ کے ظلم میں کافی دیر لگ جاتی, بچت ہو جاتی, کیونکہ ادھر سارے ہی وہ مطلب 90% یا سارے ہی ادھر بنگالی رہ رہے تھے. ایک تو آپ انہیں پولیٹیکلی ڈپرائیو کرتے تھے, آپ ان کی سیٹیں نہیں دے رہے تھے, فارم 47 کا آپ نے الیکشن کے نتائج اپنے بنائے, یحییٰ خان نے بھٹو کے ساتھ مل کے بھٹو کو استعمال کر کے, لیکن یحییٰ خان اس وقت کے آرمی چیف اور اس سے پہلے ایوب خان, جس طرح انہوں نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا, اور دوسرا وہ ایک قوم تھی. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ نہیں نکلتے, فلاں جگہ لوگ نہیں نکلتے, اس کی وجہ کشمیر میں کہتے نکلتے ہیں, خیبر پختونخوا میں بہت نکلتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ جنرلز کو بھی اس بات کی سمجھ ہے. یہ جو بی ایل اے ہے, دہشت گرد تنظیم, وہ کیا لکھتے ہیں, بلوچ لبریشن فرنٹ, یا جو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے بی ایل ایف, یا جو بھی انہوں نے وہاں پر ڈفرینٹ ناموں سے دہشت گرد تنظیمیں جو بنائی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قومیت ساتھ مل جاتی ہے سیاسی محرومی کے, سیاسی ناانصافی کے, تو پھر وہ ایٹم بم بن جاتا ہے, وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. ملٹری جرنلز کو مجھے لگتا ہے, ابھی بھی لگتا ہے, اتنی زیادہ ان کی بے وقوفیوں کے باوجود, ملک توڑ دینے کے باوجود, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بار یہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ پشتونوں کو جہاں پر سیاسی محرومی پہلے سے موجود ہے, جہاں پر انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں ان کے جو ذخائر ہیں معدنیات وہاں بھی آپ لوٹ رہے ہیں, ان کے پانی کے ذخائر کے بھی آپ انہیں پیسے نہیں دیتے ڈیمز کے, انہیں ویسے بھی ترقی میں جو برابر کا حق ہے وہ آپ نہیں دیتے, انہیں آپ دہشت گرد کی نظر سے بھی دیکھتے, تو پہلے سے ہی وہ وونڈڈ ہیں, زخمی ہیں, پہلے سے ہی ان کے دلوں پر زخم لگے ہوئے ہیں آپ کے خلاف. آن ٹاپ آف دیٹ, اگر آپ ان پر گورنر راج یا ایمرجنسی نافذ کریں گے, یا یہ کام جو آپ پولیس سے کروا رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی واپس لیں گے, تو یقین کریں وہ اتنے چتر ماریں گے پورے پاکستان کے باقی حصوں کو پھر, اور سب سے پہلے آپ کو ماریں گے, ظاہر ہے کہ لال کر کے رکھ دیں گے, یقین کریں. بنگال میں میں نے کل بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بنگال میں قسمت یہ خراب تھی یا اچھی تھی کہ بارڈر کے اوپر انڈیا تھا, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے انڈیا کو پھر انوائٹ کیا, کیونکہ آپ نے میرے خیال میں تو ان کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, انہوں نے آپ کی بار بار منت کی. 25 جو مارچ کو 23, 24, 25 جب آپ نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا, تو اس وقت تک حالات آپ اتنے خراب کر چکے تھے کہ آپ کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر اس کو حکومت دے دی تو یہ ویسے ہی علیحدگی ڈکلیئر کر دے گا, شیخ مجیب الرحمان کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس ساری صورتحال میں وہاں پر کیونکہ انڈین بارڈر تھا ساتھ, تو پھر ہمارے جو 90-95 ہزار فوجی افسران اور اہلکار جو وہاں پر جنہوں نے ہتھیار ڈالے, ان کو انڈیا ساتھ لے گیا, اور بعد میں منت سماجت کر کے ہم انہیں واپس لے کے آئے. یہاں پر بارڈر ساتھ افغانستان کے ملتا ہے. جو آپ کرنے جا رہے ہیں پشتون قوم کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, ان کی بات سنے بغیر ان کی 2/3 اکثریت کی حکومت, بالکل ویسی ہی اکثریت ان کے پاس ہے جیسی شیخ مجیب کے پاس بنگلہ دیش کے اندر تھی, آپ اس کا انکاری ہیں, انکار کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تن کے رکھ دیں گے, تو پھر واپس وہ تن کے رکھ دیں گے, اور جب وہ تن کے رکھیں گے تو میں نے کہا کہ ساتھ سرحد جو ہے وہ افغانستان کی, اور افغانستان سے جو آپ نے حالات اس وقت برپا کر رکھے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, افغانستان ظاہر ہے وہاں سے انڈیا کو بھی داخل کرے گا, سب کچھ کرے گا, اور جب آپ لوگوں سے انہیں اپنا ہم وطن سمجھیں گے ہی نہیں, ان کے ساتھ آپ اتنی دور نکل جائیں گے دشمنی میں, تو وہ بھی واپس آپ کو نہیں سمجھیں گے. یہ سمجھیے کہ اس وقت پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والا ایک ہی شخص ہے, اور اس کا نام عمران خان ہے, واحد لیڈر ہے جس کی پریزنس پاکستان کے 6 کے 6 جو خطے ہیں, چاروں صوبے, سندھ, بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, اور ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, ایک ہی لیڈر ہے جو سبھی جگہوں پر موجود ہے, جس کا سبھی احترام کرتے ہیں, کہیں بہت زیادہ کہیں تھوڑا کم, لیکن سبھی جگہوں پر, اور کسی کا کوئی نہ احترام ہے نہ کنیکشن ہے اس طریقے سے. اگر زرداری صاحب تو شاید اندرون سندھ, دیٹس اٹ. نون لیگ اب تو میرا خیال شاید کہیں بھی نہیں, اب تو جاتی عمرہ کے اندر بھی شاید ان کا وہ احترام نہیں ہوگا, گھر کے اندر اب تو کیپٹن صفدر بھی آپ کے سامنے کھل کے, ظاہر ہے کچھ تعریفیں تو اپنی بیگم کی وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جینا بھی ہے, لیکن اوور آل آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں, تو ان بیچاروں کا احترام تو بچا نہیں. تو ایک پارٹی آپ کے پاس رہ گئی ہے جو ملک کو جوڑ سکتی ہے, لیکن آپ اس کے در پہ ہیں, آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں, یہ بات بالکل کلیئر ہے. تو اب خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کر لیا گیا ہے, اس سے اب بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک خط لکھ دیا مراسلہ ہنگامی طور پر آئی جی کو کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, कानून का हवाला दिया है। हाल ही में एक कानून भी पास हुआ था, उससे पहले के भी कवानीन है कि आप मेंबराने असेंबली से इस तरह से सिक्योरिटी वापस नहीं ले सकते। उन्हें इस चीज़ को याद करवाया है कि यहाँ से मेंबरान अगवा भी हुए हैं, उनके लिए कुछ करने के बजाय आपने सिक्योरिटी वापस ले ली, ये सिक्योरिटी फौरन वापस कर दें। अब जरा हम पीटीआई के लिए 3-4 ऐसे अकाउंट्स, एक आध तो शायद गुमनाम है लेकिन एक दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। एक उनमें शफकत चौधरी साहब हैं जो मुतद्दद बार पकड़े गए बेचारे, मुतद्दद बार उनको बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया गया, अब दोबारा जमानत पे छूट के आए हैं। ये तीन लोग जो हार्डकोर पीटीआई अकाउंट्स हैं, ये क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? मैं सोशल मीडिया की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इधर देखिएगा। सबसे पहले अमान अफरीदी, वो कहते हैं सुबहान अल्लाह, पख्तून के तमाम एमपीए से आईजी ने सिक्योरिटी वापस ले ली, हम चीखते रहे। उन्होंने चीखती लिखा हुआ है, जाहिर है वो जरा उर्दू थोड़ा सा हमारे पख्तून भाई डिफरेंट तरह से, वो कहते हैं अल्लाह ताला फरमाती है, हम कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है। तो बहरहाल ये तो किसी को भी नहीं पता कि अल्लाह ताला के साथ फरमाती लिखना या फरमाता, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता, उलमा कराम बता सकते, मेरे इल्म में ये नहीं है कि कैसे लिखना है। ओके, अल्लाह मियां तो सभी के अल्लाह है। तो पख्तून के तमाम एमपीज आईजीपी ने सिक्योरिटी वापस ले ली, हम चीखती रहे कि चलाते रहे कि कानून साजी करो, तरमीम करो, असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं। कभी किसी को टाउट कहा, कभी किसी को एजेंडे पर कहा, कभी किसी को साजिशी कहा, कि जब हम कहते थे कि आप ये फौरी तौर पर कानून साजी क्यों नहीं करते तो हमें ये सब कुछ कहते थे। वो कहते हैं आप भुगतो। आगे चलते हैं, स्पीकर खैबर पख्तून, ये सैफ अफरीदी, ये भी एक बहुत ही प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट है, दिन रात ये भी तहरीक इंसाफ के लिए ही लिखते हैं। वो कहते हैं कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती साहब, आपके पास मजीद सुस्ती का वक्त नहीं, अब इसी वक्त असेंबली खोलें, अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करें, पुलिस एक्ट में तरमीम करके आईजी और सेक्रेटरी को असेंबली बुलाएं। अच्छा, वैसे बाय द वे ये उन्होंने नहीं करना, ये वजीर कानून ने करना है, ये बिल जो है वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने पुट अप करना है, वजीर कानून ने करना है, उसके बाद फिर स्पीकर का काम शुरू होता है। स्पीकर खुद से नहीं कर सकता, स्पीकर ने तो मेरे ख्याल में कोशिश की होगी, अभी इधर से बिल जो है वो वहां पर जो है वो नहीं जाकर जमा करवाया गया, मेरी जो इत्तलात है। शफकत चौधरी वो शख्स हैं जो कम अज कम दो दफा उनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर से उठाया गया, ज्यादती की गई, मारपीट किया गया उनके साथ की गई, और अभी हाल ही में वो दोबारा जमानत करवा उनकी होके वो बाहर आए। तो एक हार्डकोर पाकिस्तानी, नजरियाती पाकिस्तानी आप ये कह लीजिए, जो इमरान खान के नजरिए पर बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस एक्ट पास होकर इस पर अमल भी हो जाना चाहिए था। जब आपको मालूम है कि आपका मुकाबला लाकानूनियत से है तो इसका सदेबाब भी सूबाई हुकूमत को करना चाहिए था। अब वक्त है सूबाई हुकूमत सूबे में अपनी रिट साबित करे, मुकाबला तो पहले से ही ऑन है। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है, और वो है कि सुहेल अफरीदी लॉन्ग मार्च छोड़कर वापस वजीर आला हाउस पहुंच गए, कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब करने का अमकान, ये अली हसन कह रहे हैं। देखते हैं होता है इजलास या नहीं, लेकिन वो लॉन्ग मार्च को भी लीड कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा बहुत ही बेहतरीन तकरीर कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं, हमारी पूरी दुआ है कि वो इसमें कामयाब हों। लेकिन साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने बार बार तवज्जो दिलाई थी, बार बार ये ओपन खत रखा था, उससे पहले भी कहा था कि लेजिस्लेशन पास करनी चाहिए, कई दिनों से मैं लगा, कुछ दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा गिल साहब आपके वीलॉग का मजा नहीं आ रहा, आप उम्मीद नहीं दे रहे, फलां फलां वीलॉगर को हम सुनते हैं वो उम्मीद देता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि झूठी उम्मीदें आपको मैं नहीं दूंगा, ये मेरा काम नहीं है, यहां से मेरा आपका जो रिश्ता है वो ये नहीं है कि जो नहीं मुझे नजर आ रहा मैं आपको वो बताऊं, क्योंकि मैंने आपको झूठी उम्मीद देनी है। और जब आप फिर दड़ाम करके गिरें तो आपको यह भी समझना आए कि कितना नीचे अभी गिरना है, मतलब कि कितनी पस्ती में हमें दोबारा जाना पड़ना है, कितना डीमोटिवेट होना है। तो जब आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करके बहुत ऊंचा ले जाके नीचे गिराया जाता है तो चोट भी उतनी लगती है। मेरा फर्ज है कि अगर मुझे सामने नजर आ रहा है कि हालात खास तरफ को जा रहे हैं तो मैं आपको पहले अवेयर करूं ताकि आप उतने डीमोटिवेट ना हो, ताकि दोबारा आपको उठाना जो है वो मसला ना बन जाए, मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि मेरा मकसद आपको झूठी उम्मीदें और झूठा किस्म का माहौल बना के वाहवा करके इसने ठोक दिया, इसने बम निकाल के रख दी, इसने तबाह कर दिया, इसने फट्टे चुक दिए, ये सारा बहुत आसान है, बट दिस इज अनएथिकल। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है, और मुझे गलत लग सकता है, ये बात बिल्कुल हो सकती, मेरा तज्जिया गलत हो सकता है, मेरी रीडिंग सूरत हाल की गलत हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि जो मैं रीड करता हूं, जो मुझे पता है, जो मैं प्राइवेटली सोचता हूं और यहां कैमरे के सामने बैठ के आपको कोई और ही तस्वीर दिखाऊं। इसलिए मैं पिछले बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पुलिस का ये एक्ट पास होना चाहिए, बार बार सवाल कर रहा हूं। फिर जो रिटायर्ड जज साहब ने पूरा एक एक पूरा खत लिखा मुझे, और मैंने आपको पहले भी कहा कि खान साहब की मुझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि वो मुझे जो भी भेजें वो मैंने आपसे शेयर करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं कि मैं वो शेयर करूं। कुछ दोस्तों ने कहा इस मौके पे नहीं करना था, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं। मुझे खान साहब ने कहा था ये जो भी चीज आपको भेजें ये आपने शेयर करनी है, और मैं यहां कैमरे पे ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंशाल्लाह जब भी खान साहब से बात हो, कोई भी पूछे कि शहबाज गिल ने ये किया, तो वो बिल्कुल ओन करेंगे इस चीज को कि हां उस शख्सियत के बारे में मैंने उन्हें कहा था कि वो जो भी आपको भेजे आपने लोगों के साथ शेयर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने आपको कहा तो आप सबने कहा कि ओहो, आप सबका मतलब बहुत सारे लोगों ने कि गिल साहब ये वाला टाइम नहीं, अभी जरा लॉन्ग मार्च पे फोकस करें। ऐसा थोड़ी है कि लॉन्ग मार्च पकौड़े निकल रहे हैं तेल में कि आप साथ पानी का गिलास नहीं पी सकते। मेरे ख्याल में पकौड़े निकालते हुए भी बंदा साथ पानी पी सकता है। इसी तरह लॉन्ग मार्च आप सारा दिन करें, सुबह के 2-3 घंटे में ये पुलिस का कानून भी पास हो सकता है। ये आप ही की प्रोटेक्शन है, आप ही के लोगों की बेहतरी है। याद कीजिए, लोगों ने कहा था कि पंजाब असेंबली तोड़ना बहुत गलत फैसला था। आप में से बहुत सारे ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब आप किसी चीज के भी एक्सपर्ट नहीं, मसला ये है कि जैसे डॉक्टर हैं उनको मेडिसिन का बहुत पता है, हमें तो पता नहीं, 5 साल पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, फिर आप डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह फाइनेंस के एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हें सारी चीजों का पता है कि फाइनेंस ने कैसे मूव करना है, क्या होना है। इसी तरह आर्किटेक्ट्स को पता है, फिजिक्स के जो माहिर हैं उनको फिजिक्स का पता है। जो पॉलिटिक्स है ये गरीब की जोरू सबकी भाभी, सब समझते हैं कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं। तो हमारा अब फील्ड ऐसा है कि इसमें सारे लोग ये समझते हैं कि जितना हमें पता है उतना ही उन्हें पता है। हालांकि ये भी एक स्पेशलाइज फील्ड है, इसमें भी जो लोग इस काम को करते हैं या जिनका एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड, या जिन्होंने हुकूमत में वक्त गुजारा, इदारों के साथ काम किया, इदारा में सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहा, पुलिस आ रहे ब्यूरोक्रेसी, हमें पहले पता चल जाता है कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन मसला ये कि आप भी, और आप हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी राय जो है और एक बंदा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उसकी राय बराबर है। मैंने बताया ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो ऐसा नहीं होता। मसलन एग्जाम्पल देते हैं, इमरान खान ने जब असेंबलियां तोड़ी, अगर वो ना तोड़ते तो क्या होता? यही जो हमें मार्क

खान के उस असेंबली तोड़ने से हुआ क्या, सारा सिस्टम नंगा हो गया, एक कम चंगा कर गया, सारे नु नंगा कर गया, मतलब के खान ने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। पहले भी इन्होंने ये सारा काम करना था, रख रखाव के साथ करना था, कोई तरीका वारदात निकाल के बीच में से, गवर्नर राज इधर उधर, करप्शन का केस बना दिया, वो कर दिया, अपोजिशन उठ खड़ी हुई, लेकिन इमरान खान ने असेंबली तोड़ के 90 दिन में इलेक्शन ना, कई जज उसमें बेनकाब हो गए, अदलिया हो गई, वकला हो गए, फौज के जनरल्स हो गए, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सब ने आइन छिकनी कर दी। अब जब भी कभी इंशाल्लाह वक्त बदलेगा तो जिस जिसने उसमें आइन छिकनी की हुई है उन सब पर आर्टिकल 6 लग सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप बात करें तो यहां भी जाहिर दीवार पर लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है कभी ना कभी, जब भी इन्हें पहला मौका मिला, अभी मिल नहीं रहा था या अभी भी शायद इनको खतरा है कि हमें मार पड़ेगी, माहौल बना रहे हैं पीटीआई को वहां हर तरह से बदनाम करने की इन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की है। मतलब क्या इन्होंने जीबी में खैर की, वहां पर इन्होंने नहीं छीना, रजीम चेंज नहीं की, क्या इन्होंने आजाद कश्मीर में रजीम चेंज नहीं की, तो आपको क्या लगता है इन्होंने केपी में क्यों नहीं की, छित्रों का डर था। वहां ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीके इंसाफ को धीमी आंच के ऊपर कई चीजें पकाते हैं ना, धीमी आंच पे पहले गंडापुर साहब के साथ, फिर सोहेल अफरीदी के साथ कोलैबोरेशन रखें, कहें इकट्ठे मिलके काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, ताकि पख्तून अवाम इमरान खान की जो वहां पार्टी है, वोट बैंक है, उससे मुतनफर हो जाएं, और जब पीटीआई वहां पर वीक हो जाए तो तब वहां पर रजीम चेंज कर दें। ये इनका प्लान था। ऐसे ही जैसे सांप बाहर से बहुत मुलायम है लेकिन वो आपके इर्द गिर्द घेरा डाल रहा है और आखिर उसने आपको डसना है, यही पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स भी कर रहे थे यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब आपको जब मैं ये बातें बताता हूं आपको बुरी लगती है, आप कहते हैं फलां बहुत उम्मीद देता है, आप उम्मीद नहीं देते, झूठी उम्मीद कैसे दूं मैं आपको। तो इसलिए कह रहा था कि ये पुलिस का काम करना चाहिए था। फिर आप कहते हैं कि जी कुछ लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स भेजे कि गिल साहब क्या बातें करते हैं, आपको नहीं पता कि यहां पर वही होना है जो चौधरी चाहता है, मतलब जो जनरल्स चाहते हैं वही होना है, तो अगर आप कोई कानून बना भी देते तो आप क्या तब्दील करते। ये बात आपकी बहुत हद तक दुरुस्त है इंडिविजुअल्स के मामले में, पब्लिक के मामले में नहीं, इंडिविजुअल्स के मामले में। जैसे अगर आप मुझसे ये कहें कि सदर आरिफ अलवी बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, आपकी राय अपनी हो सकती है, मेरी राय में वो एक इंडिविजुअल थे, उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं थी, दफ्तर में उन्हें लॉक करके वहां उन्हें कुछ सजा दे के उनसे वो जबरदस्ती साइन करवा सकते थे, क्योंकि आपके पास कानून कोई भी बना दे, चौधरी गुंडागर्दी करता है उसने वही करना है जो करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब पब्लिक एट लार्ज को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो चौधरी भाग जाता है, पब्लिक एट लार्ज को जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो चौधरी भाग जाता है, जैसे किसी कमरे में बहुत ठंड हो जाए ना तो मक्खियों की स्पीड कम हो जाती है, इसी तरह और भी बहुत सारे जानवर जो हैं कुछ अंधेरे में बड़ा सफर करते हैं, कुछ रोशनी में सफर ज्यादा करते हैं और कुछ रोशनी को देख के भाग जाते हैं, चमगादड़ की आंखें रोशनी में बंद हो जाती हैं, पता है ना आपको इस बात का। अब मुझे बताइए आपने गांव में अगर आप रहने वाले हैं तो आपने ठीकरी पहरा सुना हुआ है कि गांव के लोग लगाते थे और वो चोरों को भी पकड़ते थे, उनका मुकाबला भी करते थे। अब अगर आपने ये लेजिस्लेशन कर दी, एग्जांपल दे देता हूं, बात लंबी हो रही लेकिन जरूरी आपकी समझ के लिए कि मैं क्यों पुलिस के इस लॉ को बार बार तब्दील करने के लिए आवाज उठा रहा था। लाहौर में एक रिटायर्ड मेजर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, लोकल लीडर थे, उनके घर पर फस्तायत की गई, याद कीजिए 9 मई से पहले की बात है ये, जब इमरान खान साहब ने हुकूमत गिरने के बाद लॉन्ग मार्च पिशावर से इस्लामाबाद को निकाला था और हमारे कारकुन फैसल को लाहौर के अंदर शहीद किया था। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये जो अवाइल थे आप ये कह लीजिए कि अप्रैल से जून के दरमियान या जुलाई के दरमियान 2022 की बात कर रहा हूं। तो एक घर में पुलिस ने चादर चारदीवारी पामाल की, मेजर साहब ने अंदर से बंदूक से, उन्होंने सोचा को डाकू आ गए, उन्होंने गोली चलाई, पुलिस वाला मर गया, मेजर साहब अभी भी कत्ल का मुकदमा भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी फिलहाल यही कानून है, लेकिन अगर कानून बदल दें आप, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली एक पास कर दे कानून, जैसे अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स के अंदर यह कानून है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, किसी के लॉन पर, किसी के घर पर, किसी के घर के फ्रंट दरवाजे पर उसकी इजाजत के बगैर जाएं और वो खतरा महसूस करे और वो आपको गोली मार दे तो उसको प्रोटेक्शन है कि आप उसकी प्रॉपर्टी पर गए थे, अगर आप यही कानून खैबर पख्तूनख्वा में बना दे तो मैं आपकी बात मानता हूं कि फिर भी पुलिस चौधरी के कहने पर पकड़ लेगी जो गोली मारेगा, लेकिन क्या होगा एवेंचुअली, क्या होगा 2 महीने 6 महीने साल, जब ये वक्त बदलेगा तो वो बंदा बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर उसने गलत नहीं किया होगा कुछ भी, कानून ने उसे प्रोटेक्शन की होगी। तो जब आप खैबर पख्तूनख्वा में ये कानूनी प्रोटेक्शन देंगे तो आपको लगता है इकबाल अफरीदी किसी को आने देगा अपने घर में? आपको पता है ना कि वहां गुल खान के पास अंदर क्या क्या है, फिर क्या क्या चलेगा अंदर से। तो आपने पब्लिक एट लार्ज की आपने ताकत 8 फरवरी को नहीं देखी 2024 को? क्या जर्नल्स ने वही कर लिया जो करवाना चाहते थे? मार मार छितर उन्होंने धुआं नहीं निकाल दिया?
किस तरीके से उन्होंने बैलेट पेपर्स के ऊपर मोहरें लगाई।

थी, और किसने? हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, औरतों ने, मेरा मतलब बदल के रख दिया, क्योंकि एक इज्तमाई इंपावरमेंट थी, एक बंदे की नहीं थी। आप जब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इंपावर कर देंगे लोगों को कि आपके घर में कोई आए, कानूनी तौर पर आप उसे गोली मार सकते हैं, अगर वो आपकी चादर चार दीवारी को पमाल करे, आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मैं देखता हूं ये कैसे जाते हैं लोगों के घरों में, ये आपको लगता है उसके बाद भी यही होना है। फिर अगर आप हर घर, हर गांव में 20-20, 25-25, 50-50 लोगों की कमेटी बना दें, जिसे गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हो, वे इदारे के तौर पर काम करें, वो इनको फेंटा लगाएंगे गांव गांव, गली गली। अभी नहीं लगाते, अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये हरियाणा की, अगर मेरे एडिटर को मिल जाए, कल हरियाणा के लोगों ने पुलिस को यरगमाल बना लिया इंडिया के अंदर जब वहां गई। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत दफा हुआ है, कई जगहों पर ये पुलिस को, इवन मिलिट्री के लोगों को बिठा लेते हैं कि बैठ जा चांद, नहीं जाओगे तुम वहां का जिरगा, वहां के लोग कहते हैं कि बैठ के बात होगी। आप उन्हें एम्पावर करेंगे तो वो वापस, मैं ये नहीं कह रहा 100% वो वापस इनके हम पल्ला हो जाएंगे, इनके पास बंदूक है, टैंक है, तोप है, फाइटर जेट है, लेकिन काफी हद तक इनकी मंजी पीढ़ी ठोक के रख देंगे वापस वो। तो इसलिए आपको कहते थे कि जैसे इमरान खान ने 90 दिन में इलेक्शन के लिए जो असेंबली तोड़ी, उसके बाद ठीक है हमारे साथ जो कुछ होना था वो 5-6 महीने पहले हो गया, 5-6 महीने के बाद भी जब असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी करके जाना था तब भी यही होना था, 5-6 महीने पहले हमारे साथ वो सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया, पूरा निजाम नंगा कर दिया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें फौरी तौर पर, आज भी वक्त है, सोहेल अफरीदी गए हैं तो पुलिस एक्ट भी पास करें, कमेटी जो जो इदारे बनाएं, मतलब पब्लिक की कमेटीज बनाएं जो अपनी प्रोटेक्शन करें शहरियों की, पब्लिक को राइट दें चादर चार दीवारी की कोई पामाली करे तो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर गुजरें, इस तरह के तमाम कवानीन पास करें। आप देखेंगे किस तरीके से मामला फौरी तौर पर काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा 100% रिजल्ट आएंगे, 10-20-30 और कुछ नहीं, नंगा करके तो जाएंगे ना, आप जाते जाते नंगा करके तो जाए ना कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये अब जरा आ जाएं गवर्नर राज की, तो ये पेशावर यूनिवर्सिटी के तुलबा निकलकर मुमकिना गवर्नर राज के नफाज के खिलाफ शदीद एहतजाज नारेबाजी कर रहे हैं, मतलब कि लोग वहां पहले ही रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं। बाबे सवात, सवात को जो रास्ता जाता है उसको बंद करने के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए ताकि वहां से लॉन्ग मार्च ना निकल सके, मेन शाहराओं को बंद करने का फैसला ये सब पुलिस कर रही है, ये सब पुलिस से करवाया जा रहा है। अगर आपने सवात के शहरियों को आज कानूनी इंपावरमेंट दी होती एक्ट पास करके और उनकी शहरी कमेटियां बना के, तो शायद फिर भी रोड ब्लॉक होते, लेकिन रोड ब्लॉक होने से पहले छित्रो छित्री काम जरूर होता थोड़ा सा, क्योंकि कानूनी होता शहरियों का वो रिएक्ट करना। आगे चलते हैं, पेशावर में पीटीआई एमएनए शेर अली अरबाब के घर पर मुबैना छापा, शेर अली अरबाब घर पर मौजूद नहीं थे, बच गए। फिर सोहेल अफरीदी कहते हैं कि तुर्की तो याद है ना, जब तैयब अर्दोगान जो है हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, उनकी अवाम का रद्द अमल आया, इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी तुर्की की याद ताजा करेंगे, सोहेल अफरीदी कहते हैं। फिर मोहसिन नकवी रात गए, वो जो लड़की बेचारी जिसने फंदा लगा के अपनी जिंदगी खत्म कर दी, उसके साथ वीजा फ्रॉड हुआ था, उसके घर गए और अब कह रहे हैं कि हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, पहले वो बेचारी को अगर कहीं इंसाफ का जरा सा भी उम्मीद होती तो अपनी जिंदगी वो खत्म ना करती। वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि एमरजेंसी ना लगने की अब कोई गुंजाइश नहीं, आप लोग बताएं अब क्या गुंजाइश रहती है, मैंने आखिरी हद तक कोशिश की लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, बैरिस्टर गौहर से भी पूछें मैंने क्या कुछ नहीं किया, वो बैरिस्टर गौहर को अपना गवाह बना रहे और इंशाल्लाह दे देंगे बैरिस्टर गौहर साहब भी इनको, इनके हक में गवाही। अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मोहसिन खैबर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर दाखला सेनेटर मोहसिन नकवी और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, मजमुई सूरत हाल और बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है उसमें एमरजेंसी और गवर्नर राज के ऊपर बातचीत की गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और एमरजेंसी नाफज करने का फैसला हो चुका, आर्टिकल 232 या 234 इस पर हतमी फैसला होना बाकी है, गवर्नर राज पूरे सूबे में लगेगा, एमरजेंसी शायद कुछ अजला में लगे। आगे जो प्रवेश खटक है, आपको पता है ये भी बड़े लीथल हथियार हैं जनरल्स के, वो कहते हैं कि जमहूरियत में एमरजेंसी लगाना अच्छा इकदाम नहीं, मौलाना फजल रहमान इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप कहेंगे आपने इस्लामाबाद पर हमला करना तो क्या वफाकी हुकूमत चुप करके बैठेगी, वजीर आला था कोई दहशतगर्द, जब मैं वजीर आला था तो कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता गवर्नर राज लगे, मुझे एमरजेंसी लगती हुई नजर आती है, मुझे एमरजेंसी की सूरत में किरदार अदा करने की कोई ऑफर नहीं आई, अगर आई तो सोचूंगा, वजीर आजम मशीर बुराए दाखला परवेज खटक। वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं, मुझे अगर कोई जिम्मेदारी दें, लेकिन मुझे लगती हुई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। असलम गौरी रिपोर्ट करते हैं, असलम गौरी साहब जो हैं ये तर्जुमान हैं
फजल रहमान साहब की पार्टी के, वो कहते हैं गवर्नर राज या एमरजेंसी लगवाने का कहना आसान है, इसके बाद इस सूबे में हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। मौलाना साहब के पास वज़रा आए थे, उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली थी कि फिलहाल वो किसी किस्म का गवर्नर राज या एमरजेंसी नहीं लगा रहे। दूसरी तरफ अब पहले ही केपीकी की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, क्या अब एक दूसरी जंग सियासी लोगों के साथ भी शुरू करना चाहते हैं? उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब एमरजेंसी या गवर्नर राज लगेगा। चांद अजला में एमरजेंसी लग सकती है, लेकिन पीटीआई को फिट करने का प्रोग्राम बना लिया गया है, बहुत सख्ती होगी। ये एमएफ जो है, मेरा दिल तो करता है एमएफ का पूरा ही लफ्ज ले दिया करूं, माय फेवरेट, मतलब आप पता नहीं क्या समझ गए। तो वो मुनीफ फारूक फिर कहते हैं तो ये सहाफत रहेगी, कल तक ये बिल्कुल गवर्नर राज लग रहा था, अब फिर चेंज कर ली अपनी पोजीशन, तो सुबह कोई और बात है, शाम को एक और बात है, और जो टेवा चल गया, क्योंकि सारे एनालिसिस किए हुए हैं हम, बहरहाल आपके सामने अपने एनालिसिस पर अभी तक कायम है, गलत हो सकता है मुझे, क्योंकि हमारे जर्नल्स किसी हद तक भी बेवकूफ हो सकते हैं, जो इन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान तोड़ा था, बांग्लादेश बनने दिया था, इन्हीं का कारनामा था, इनकी बेवकूफ़ी का था, तब भी अगर शायद हम होते उस वक्त भी तो प्रिडिक्ट ना कर पाते कि ये इतने पस्त सोच है। तो ये कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मेरा तजिया अभी भी है कि गवर्नर राज या एमरजेंसी ये इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करके बीच में काम डालेंगे जो भी, क्योंकि ये उन्हें वहां लोगों की नजरों में बदनाम करना चाहते हैं, ये खुद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे बका खेल का वो इलाका जो फौज ने ऑपरेशन के बहाने मुकामियों से खाली करवाया, 3 साल के अंदर उनकी वापसी का वादा किया, लेकिन अब हर साल चलगोजे की फसल बेचकर 4 अरब रुपए कमाया जाता है, जिनको वापस लाने का वादा किया था, आज 10 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी वापस नहीं लाया गया। वकार खान ये कहते हैं कि बका खेल के इलाके में भी ऐसी फौजी ऑपरेशन किया गया, कहा कि आपको बस चंद महीनों में वापस ले आएंगे, 10 साल हो गए उस जमीन पर, अब फौजी जनरल्स ने कब्जा किया हुआ है, वहां चलगोजे की फसल लगाते हैं, उसे बेच के 4 अरब सालाना कमाते हैं, लेकिन उन लोगों को वापस उनके घरों तक नहीं जाने दे रहे। ये सूरत हाल जो है वो वकार खान जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। आखिर पर आपको ये बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरतेहाल पर तफसीली बातचीत हुई है, मौलाना को पीटीआई ने और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात से आगाह किया है अर्दली साहब ने, और इससे पहले खबर यह आई थी, फहीम अख्तर मलिक ने रिपोर्ट किया कि ब्रेक थ्रू हो गया, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मौलाना फजल रहमान की मेजबानी में मुजाकरात होंगे। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है, दिल यही है कि वहां फौजी ऑपरेशन हो, पैसे भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे, मरे पख्तून, मादनियात बेचें जनरल्स। मुझे यहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।